पुराण जस उत्तम खट दर्शन गाव है राम शंकर करोड़ तैतीस ते आयो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नर गण गंधर्व जस गाव है।

मन मिल संत जना जस गायो, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ। तिस जन कौ मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो, तन माया संपै तिस देवो, जिन हर मीत मिला

इच्छा पाई जो करे सो भला कर मानिए हिकमत हुक्म चुकाइए जा कै प्रेम पदार्थ पाइए तो चरणी चित लाइए

खेल सब हरतनी, सालाहे हो सच सब ऊपर हरतनी। सब आए हुकम खसमाहो, हुकम सब वर्तनी। सच साहेब साचा खेल सब हरतनी, सालाहे हो सच सब ऊपर हर।

सो धन गुरु शाबास है हर दे स्नेहा हो वेख वेख गुरु विकसिया गुर सत गुर देहा गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन जिन सुन सिखा गुर मन्या तिना भुख सब जावी हर का मार्ग आखी है कहो कित बिद जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए हर का मार्ग आखिए कहो कित बिद जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरमुख हर आराध

पछताने हाथ फलगा, फिर पछताने हाथ फलगा, हर राख राख जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रत पलगा।

आए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचै रंग राता गुर कै सहज सुभाए। मानमुख

है हृदय रखो संभाल, एहो खर्च अखुट है गुरमुख निभै नाल। ए मन मूल हो भुलिया जस है ज पत गवाए, ए मन मूल हो भुलिया जस है पत गवाए। इहो जगत मोह दूजै व्यापिया गुरमति सच ध्याए,

आनंदिनो शब्द रवहो अनहद शब्द बजाए राम अनहद शब्द बजाए हर जियो कर आए हर गुण गाव हो नारी आनंदिन भगत करहें गुर आ गए सा धन कंत प्यारी गुर का शब्द वसे।

नदर प्रभु सत संगत पाई निज कर होआ वासा हर मंगल रस रसन रसाए नानक नाम प्रगासा।

गुण शब्द रव रहया सो प्रभु मेरा स्वामी राम, प्रभु मेरा स्वामी अंतर जामी, घट घट रवया सोई गुरमत।

नाम अखोट निदान है गुरमुखमन बसिया कर कृपा नाम देव सी फिर लेख ना लिखिया सेवक पाए से जन मिले जिन हर जप जपिया।

गुर वचनी मन सहज त्याने हर कै रंग रत्ता मन माने मन मुख भरम भुले बौराने हर बिन क्यों रहिए गुर शब्द पछाने।

मन मुख बंद विचारे सोजन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले तिन की गहन गत कही ना जाई सच्चा आप सवारे परम पुलाने से मन मुख कही है ना उरवार ना पारे जिसनो

मन अभिमाना कहत सुनत सबे सुख पावह मानत पाहे निधाना बिलावल महला तीजा। गुरमुख प्रीत जिसनों आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए।

दौरी चित भ्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया चंचल संग न चालती सखिए अंत तज जावत माया रस भोगन अत रूप रस

आप ही घट घट आप अलिपना आपे अवगत आप संगरचना कहो नानक प्रभ के सब जचना बिलावल महला पंजवां।

सफल सो आया, बिलावल महला पंजवा। मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहया।

अवर काश सब प्रभ कै हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवां।

भांड। हर संग सहाई महामीत तिस स्यों तेरा भेद, विधा पंच बटवारई उपजियो महाखेद। नानक तिन संत

दृष्ट दृष्टाए अब मान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब मान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब मान खोए खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अतुल अतुल अतुल नह तुलिया।

रख रख चरण हर ताल पूरैया, हर कै रंग रत्ता मन गावै, रस रसाल रस शब्द रवैया, निज कर धार चोवै।

पाल मन दहत चल चल गवन करैया पर भवन करै बूझै नहीं तृष्णा पर भवन करै बूझै नहीं तृष्णा मिल संग साध दया कर लहिया आसन सिद्ध सिख है बहुतेरे मन मांग है रिद सिद्ध चेटक चेटकैया तृप्त संतोख।

में सगले कुल उधरे नाम हमारे कार्य सीध नाम संग मनुआ गीध नामे ही हम निरपौ पहे नामे आवन जावन रहे।

तत पछाणे। ऐसा ज्ञान विचारे कोई तिसते मुक्त परम गत होई रहाओ। दिन मह रैन रैन मह दिनियर उसन सीत बिद सोई। ता की गत मित अवर न जाने गुरबिन समझ न होई। पुरख मह नार नार मह पुरखा बूझो ब्रह्म ज्ञानी। धुन मह ध्यान ध्यान मह जानिया गुरमुख अकथ कहानी। मन मह जोत जोत मह मनुआ पंच मिले गुर भाई। नानक तिन कै

फलत फलत होहे दोहे सुहेले अचर्ज पुरख त्याओ रहाव उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब होव हमीत निर्मल तेरा होवै चीत सबत उत्तम इहो करम सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म

गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ। ममता मार हो मैं सुख है त्रिभवन जोत तुम्हारी, मनसा मार मने मह राखै सतगुर शब्द बीच।

ये कुटंब छोड़ पर पवन करहे ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है।

भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बूझ बुझाई संत हो गुरमुख दे वडियाई रहाओ सच रहो सदा सह।

आई। सतसंगत मह नाम निर्मोलक वड्डा भाग पाया जाई। परम ना भूलहो सतगुर सेवहो मन राखहो एक ठाई।

गवाई। त्रै गुण अचेत नाम चेत है नाही, बिन नाम है बिन सजाई। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै मूरत, त्रै गुण परम फुलाई।

आई संत हो, सतगुर खेप निवाही संत हो, हर नाम लाहा दास कौ दिया, सगली त्रिशन उलाही संत हो रहाउ।

हर भाणा गुर पहाया मेरा हर प्रभ करे शाबास जियो भगत सत गुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पहावै।

नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास ध्याएणा।

तुझे पछान नहीं, मोहे निर्गुण अनाथ शरणी आया। बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया, गुरु नाम दिया कुशल थिया।

शंत प्रभ बिपत निवारण तिस बिन अवरना कोय जियो सदा सदा हर सिमरिय जल थल महियल सोए जियो। जल थल महियल पूर रहया एक निमख मन होना विसरै गुर चरण लागे दिन सभागे।

कस कसवटी सह सोताओ नदर सराभ वन्नी चढ़ाओ जगत पशु अहंकाल कसाई कर करतै करणी कर पाई जिनकी

सुखनारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच संभालेन नानक आए से परवान पए नानक आए से परवान पए जे सगले कुल तारेन महला तीजा गुरु जिन्ना का अंधला सिख भी अंधे कर्म करेन ओए पहाणे चलन अपने नित झूठ।

सब किल बिख हर जस जाला, मन आनंद भया गुर पाया, जन नानक शब्द निहाला, बहु मैले निर्मल होया, सब किल बिख

पंजवा प्रभ समर्थ देव अपार कौन जाने चलत तेरे किश अंत नाही पार रहाओ।

0: सुख है।
1: गुर सेवा सदा सुख है, जिसनो हुक्म मनाए। सोयना रूपा सब तात है, माटी रल जाई। बिन नावे नाल न चल्ली सतगुरु।

मन हर भगती संग सीवना, मात्या हर रसम हैराते, तिस बहुड़ना कबहू औखीवना, मिलियो तिस सर्ब निधान।

सुख दुख ही तय अमर अतीता गुरमुख निज कर पाएंदा शाम वेद रिग जुजुर अथर्वण।

गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाईऐ, बिन गुर राम नाम क्यों त्याईऐ। गुरमत लेहो तरहो पवद उत्तर, मुक्त भय सुख पाया। गुरमत कृष्ण गोवर्धन थारे, गुरमत सायर पाहन तारे। गुरमत लेहो परम पद पाईऐ, नानक गुर भरम चुकाया। गुरमत

निर्मल शब्द कमाया, अदृष्टि अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जुग

भगत हेत गुर शब्द तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा। हर पावै गुर मेल मिलाए, हर तारे जगत सबाया। जिन जप

यो भव जल जगत शब्द गुर तरिया अंतर की दुविधा अंतर जरिया पंच बाण ले जम कौ मारे गगन अंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाई है शब्द सुरत बिन

अंत सब किछ सूझै अज्ञानी अंध कमाई हे। मनमुख सहसा बूझ ना पाई मर मर जम्मै जन्म गवाई। गुरमुख

गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरै ना जन्मै गुरमुख, गुरमुख मरै ना जन्मै गुरमुख, गुरमुख शब्द समाहा है गुरमुख ना।

है, आन दिन गुण रव है दिन राती, आन दिन गुण रव है दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मर है से मरण सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा भाओ चुकाया, हर जियो मिले आप मिलाए, गुर कै शब्दे आप गवाए, आन दिन सदा

कुसंगत बहे सदा दुख पावहि दुखो दुख कमाया। सतगुर बाजहु संगत ना होई बिन शब्दे पार ना पाए कोई। सहजे गुण रहै दिन राती ज्योति ज्योत मिलाया। काया बिरख पंखी विच वासा अमृत जुग है गुर शब्द निवासा। उड है ना मूले ना आव है ना जाही निज घर वासा पाया। काया सुध है शब्द भी

गुण निधान मंतन महरव्या, जन्म मरण की जोन ना पभया, दुख विनाश किया सुख डेरा, जहाँ तृप्त रहे आगाई है।

पिया बहु बसहु घर अपने। लख चौरासी नरक ना देखो रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उदा

उपदेश तुट है सब बंधन, यो परम मोह पर जालना। जहरा खै सोई सुख थाना, सहजे होए सोई पलमाना।

गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया रतत गर्म मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रत पालिया ओ सगल घटा का मालका चरण कमल शरणाई आया साध संग है हर जस गाया।

सच शाह अडोलै सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुदनो तोलै पन्नन करण समर्थ है ओपत सब परलै करण कारण समर्थ है घट घट सब बोलै।

रहाओ, कर अनुग्रहो आप राखियो, नह उपज पाओ बेकार, जिस प्राप्त हुए सिमरै तिस दहत नै संसार।

बिन कबहु न छूटस, बिरथा जन्म भयो रहाओ। तन मह काम क्रोध हौ ममता, कठिन पीर अत भारी, गुरुमुख राम जपहो रस रसना।

बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी, राम नाम बिन उर्ज मरे। दंड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गवन अत भ्रमण करे। दंड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गवन

पत खोई बहले फेख पवह दिन राती हों मैं रोग न जाई पढ़ पढ़ लू जह बाद बखान है पढ़ पढ़ लू जह बाद बखान है मिल माया सुरत गवाई सतगुर सेव है।

बुझाए। संडा मरका सब जाए पुकारे, प्रहलाद आप बिगड़िया, प्रहलाद आप बिगड़िया, सब चाटड़े बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा हुए रघुराया। हाथ खड़ग कर

मस्तक भाग होवै जिस लिखिया सो गुरमत हिरदय हर नाम सम्हार मधसूदन जपिया उरतार देही नगर तस्कर पंच धातु गुर शब्दी हर का ढे मार रहा।

रहाओ। तिन मत ऊतम तिन पत ऊतम जिन हृदय वसया बनवारी, तिन की सेवा लाए हर स्वामी तिन सिमरत गत होए हमारी। जिन ऐसा सतगुर साधना

पंजवां कोट मनोरथ आव है हाथ जम मार्ग कै संगी पांथ गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो

पंजवा साच पदार्थ गुरमुख लहो प्रभ का भाणा सत कर सहो जीवत जीवत जीवत रहो राम रसायन नित उठ पीवहो हर हर हर हर रसना कहो राम।

जवान। निकट बुझै सो बुरा क्यों करै, बिख संचय नित डरता फिरै, है निकटे अर भेद ना पाया बिन सतगुर।

आओ, तब बुझी पूर्ण सब आसा, मिटे अंधेर भय प्रगासा, अनहद शब्द अचरज बिस्माद, गुर पूरा पूरा प्रसाद, जा कौ प्रगट भय गोपाल, ता कै दर्शन सदा निहाल।

जिस नाम हृदय तिस वट परवारा, नाम बिना मन मुख गावारा। जिस नाम हृदय तिस निहचले आसन, जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन।